आकाशवाणी इम्फाल ngasi नोमाइजिंग नुमीद इंगा की तरा मरी निपान बा सकाब दलिशिंग मग चमापल निफु निपाल जुनगी ने तांग कु निपाल इंग लिसिंग निकुंतरु याइफरुव नुमीद सिगी अयुपुंग मंगा मखाई ताकि बगलोइनना आकाशवाणी इम्फाल की संगाई चैनल थोरम संदोक पहुचेरी संदोक चरी व मेगाहर्ट्ज़ शाम अहुम दशमिक मंगानी थरम तावीरी बख्वाई पुनमकपू तराम न उकचरी खुरुमजरी।

मखल मथल की थरुम क्या संदोक तुने तहन जरी वासी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दिगिनी होजी अमुक संदोक चरी रेडियो क्लास चहुम निफू मंगा शुभ तांकता क्लास सेवेन की इंग्लिश की लेशन इपिटोम ऑफ विल पावर एंड करेज थरुमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंगमांगलोइनना संदोक चब थरुमनी

आकाशवाणी इंफाल की एफएम संगाई चैनल दिगनी चतु जरीब थोरम परिंग असीगी अयो पुंग मपल मखाई फिल्मम की सही दा तांजेगनी ओलांग थागी वां मुदिशु फिल्म सिदिगी इसाई सिंग मतंग मतंग वैना अयो पुंग तरा मिनिट यंखी मंगा दिल्ली दिग्री लेदा इकाई खुमना जरीब प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीबा पुंगिंगे वा मन की बात की चामग कुंठा मंगा सुबह तांकक तांजेगनी मसीगी मतुंग मणिपुरी वाहन थोक ताव फंगीगनी

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: little clinic little clinic nagaram na miyam da matang ga chunar ba khuju khulai gi mating na specialist sing na makhal khudimaki ana laingi khudong cha ba pijari 24/7 emergency and trauma care with advanced equipment advanced neurosurgery care brain and spine surgery head injury and trauma care slip disc and spine disorders brain tumor and stroke management minimally invasive neurosurgery gi matakta hepato pancreato biliary surgery amasung gi onco surgery laparoscopic colorectal gastric liver gallbladder and pancreas cancer amasung tumor surgeries advanced gi laparoendoscopic surgeries gi surgical endoscopy ercp gi khudong chaba phangbigani orthopedic surgery obstetrics and gynecology respiratory and chest medicine amasung pediatrics ki specialist doctor singa consult tobagi khudong chaba su leigani fully equipped leiraba icu endoscopy and bronchoscopy operating microscope qsa cm gi matingna laing bagi khudong chaba phangbigani hena akupa marol gi damak little clinic natraga mobile number 8787363755 ka tanabiyu
1: आकाशवाणी इम्फाल की एफ एम संगाई चैनल दगे अदम मखल मथेल की थौरम कया लेप्तना ताबिरी गीत की थौरम दा नुंगाइरबे इसे कया मसु ताबिख्रे पोंफम असि की ओइना पुजेरकली मणिपुरी फिल्म इसे सिंह मसी मु पुनतामिनसी खुदोल की अहान बोइना लोखचरी मपु मई हाइरब फिल्म असि दगे अफाव मदी रेस्मिता अनि पुन सकपा बिमोल फुइबौना सैरिंगबा अफाव मसामंगना सैरंगबे इसेनी खुदोल तमचरी

0: Bema Bema film asidagi utamama di Sori Senjam ani punasakpa pi Prafullo na sairingba Sori Senjam masamak na sairang be sai sigaloi na tangkak asigi oina Manipuri film isai lantok jaba matanga sida Louis Sinjari Agaswani Imphal haujik Delhi dagi releda Bharat ki ikai khumna zariba Pradhan Mantri Shri Narendra Modi na miyam da piba pukningiwa man ki baat chamaga kuntra manga suba tangkak taba fangbiragani
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए ये आकाशवाणी है
2: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध

0: तो अक्सर छोटे-छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े-बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है, उसकी काट-छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत, जब बुद्धि शुद्ध ना हो, तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: महात्मा गांधी का कहना है,
2: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम,
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है लाइव रेडियो लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस न्यूज पॉडकास्ट्स साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी The best of entertainment, information, education, अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का News on Air app.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया,
4: क्या हुआ?
3: नया किट बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
3: चले
4: ले आ गया ना किट बैग।
5: आरबीआई कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल

सेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति

0: हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हर गिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनकी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती है। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो, वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं, वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले, तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: भारत की इकाई खुमनजरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मियाम द पीबा पुकनिंगीवा मन की बात चामगा कुंत्रामगा सुबह तांक ताबीरे आगजवानी इम्फाल हौजिक ताहन जखरीबा भारत की इकाई खुमनजरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मियाम द पीबा पुकनिंगीवा मन की बात चामगा कुंत्रामगा सुबह तांक की मणिपुरी वाहन थो ताबीरसी
3: आईगी नुशीजरबा इरेबाक चासिंग खुरुमजरी मन की बात मयाम अमुक हन उनथोकना नुंगाइजख्रे चही लिसिंग अनी कुनग तरुक असिगी तंखाई अमा हौजिन खिगदौरे हौखिबा था तरुक असिदा अइखोइना इरेबाक चा सिंगी थोइदोकपा माइ पाकपा सिंगी मरमदा नैनख्रे जुन था असिदसु लैबाक असिदा माइ पाकपा खरा लाकली मसिदा इरेबाक चा खुदिमकना चौथोकचब फाउरी माइ पाकपा सिंग असी लैबाक असिगी ngakselgi थबक अमदी इरोमदोम लेपचब असिग मरी लेने हंदक अहक कोलकाता इसिंग लानमीग मरी लेने थौरम अमदा सरुक यारुनबगी खुदोंचाब फंजखी मफमदुदा INS दुनागिरी INS संशोधक अमदी INS अग्रयबु भारत की इसिंग लानमीगी तेंगोलदा हापसिले जहाज सिंह अदुगी डिजाइन अमदी सेंब साब पुंबा इरेबाकी पोथोक ngakteni मरुफ सिंह जुन था असिमक्तदा चथोक चसिनगी लमदसु लैबाक असिना अचौब माइ पाक पुरगली C295 असि भारत साब एरोप्लेनी लोइनना मसीना अहानबो ओइना नोंथकत पाइख्रे असिगुंबा एरोप्लेन निफु हौजिक भारत सारे मसिदगी MSME अमदी एरोस्पेस सेक्टर दसु अनौब थौना फंगलगली सेल थोकप थबक फंगबगी खुदोंचाब हेंगलगली लोइनना भारत की इरोमदोम लेपचबगी फिरेपसु मरा चेलकली हंदकी था असिदा DRDO ना इरमदमद साजबा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सु माइ पाक न चांग येंख्रे मसी DRDO गी लेबोरेटरी अमदी इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनर सिंह ना पुल्लग साबनी मसी न ताकपदी इसिंग इपाकतगी ना आहांगव मलंग फाउबा अइखोइगी ngaksel गी शक्ति असी इरोमदोम लेपचबंगमले मरुफ सिंह जुन थादा थौरम अमसु पांगथोखी मसिदा मालेम पुंबन सरुक याखी थौरम दुदी मालेम गी जोग गी नुमितनी हंदक मालेम गी मफम लिसिंगनी चमंगा हेनबदा तोंगान तोंगान ब थौरम कया पांगथोखी अइखोई गी लेबाक तसु मियोई करोड़ कयाना मफम कयादा जोग गी थौरम सिंगदा सरुक याखी हंदक की थादा अहमदाबाद पांगथोकपा विश्व जोगासन चैंपियनशिप की मतांगदा मियाम न थगत नरी मसिदा भारत न सना गी तकमान चामग अनी याउना पुन्न तकमान चाम तारा मरी फंगलखी भारत न चैंपियनशिप असिगी तकमान गी परिंगदा अहानब मफम फंगलखी अहाक न सानरोय पुनमकी मफमदा हन्न हन्न थगत पफोंगदोचरी मरुफ सिंह जाति अमगी थवाईसी मफम दुगी मियामनी लोइनना मियाम न लौब फिरेपतु कना अमत न होंगनब ngamde लैबाक अम सेमदा मियाम गी सरुक याब हाइबसिना भारत की ख्वाइरिगी चाउब माइ पाकपनी मरुफ सिंह नोंगचुप एशियाद ओइरिबा लान गी फिबम सिबु उरुरगा अइहाकना इरेबाक चा सिंगदा करिगुम खर हाइजखी हेक यारिब मखैदी मतम खरगी ओइना सना लैब लेपियु मिरेबाक त कोइब चतप लेपियु कार पुलिंग तोबियु लौमी सिंह न केमिकल याउदबा लौ उनबगी दमक लबुक सिंगबु कन्नबगी दमक माउसागी ओइबा हार यामना सिजनबियु मसिदा मियामना मतेंग पांगबीबगी दमक अयाकना हन्न हन्न थागचरी इमुंग कयाना हंदकती लुहोंगबद सना लैररोय हाइबिरतले तंगाई फद्रबदी हानगी सनादु अमुक हन्ना सादोकतुना सिजनगनी हाइबिरतले मी मयाम अमनसु सोशल मीडियादा मखोय mirai bakta koi bachat pa leple hainasu haibirei marusing miyamna carpooling gi nungairwa wari kayasu haibirei mi ayambana yariba makhai bus amadi metro da chatnare masina petrol amadi diesel sep to bangamle laibaki mapham kaya dagi mahusagi har sinabagi pau kaya lakli marusing malem gi awab tanfam asida aikhoi bharat macha singna punna awab mayuk yaminari masida aihak yamna nungai jai aigi nung sizarab irei bak cha sing aikhoi gi leibakta ipok numit luhong khongdong ba asi imung khaktang gi thoram oibata natana samaj apumbagi thoram oi imung gi miyoi singna makhoi gi nungai bada miyamna saruk yaba pame lakliba miyoi singna kudol pochu pi maruf sing maharashtra gi nanderda imung amagi miyoi singna nungai bada saruk yaminnabasi miyam gi wari oinare mapham sigi bahadurpura khungangda petkar sagai lei imung asina nungai ba phongdok minaba oiba tarabadi warba matamda kanagumba imung amagi mateng oiba yaba pot pc haina khanare makhoi gi imung gi luhongbada imung asina khungangi miyoi lising ahum chamanga gi accident life insurance ki thaurang tawire miyoi khudingda lupa lak amamangi insurance cover tawire masigi marumda yamna thamoi sokpa wari ama lady makhoina accident thoklaba matungda imung manungna sel thungi awaba kaya mayuk nakhi asigumba matamda apikpa mating amana achoba pambai oikhi maruf singh lengakna laivak asigi miyoi karor kayabu security gi kapacha litpiri pradhan mantri suraksha bima yojana gi khuthangda supna gi lupa kun khaktangi premium chahi amagi thiraga accident insurance lupa lak ani phawba phanghali haujik phawbada skim masida miyoi karor yankhai nipan henbana yaukhre makhoi gi manungda chaurakna karor ko nipan di aikhoi gi ima indol iche ichal isanupi singni skim masigi khuthangda soklaba imung singi hisab pabada chaurakna lupa karor lising ahum chatreti mateng phangkhre maruf singh matawasumna Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bhima Yojana Su Matik Chaba Thabak Tauri Skim Masina Imungi Miyoi Amana Kudong Tiba Thoktuna Laikhidabada Mahaki Imungbu Lupa Lak Anigi Insurance Cover Tawi Masigi Chahigi Premium Supnagi Lupa Chamari Kuntra Taruk Khaktani Nomada Lupa Ama Makhai Mukki Changni Skim Masida Haujik Phawada Miyoi Karor Kuntarit Muk Yaure Masigi Khuthangda Laivak asigi imung lak taramathoi mukna chaurakna lupa karor lising kungani thoi mukki mateng phangnakhre masigi statistics asi yamna chaukhre loinana wari kaya suni mama kaya loinabi kaya na imungi mateng amadi machagi lairik laisu tamhanbada mateng oikhre maruf singh achouba ngakselgi haurakpasi apikpa senthang amadi apikpa khongthangdagi haurai Skim sing asigi matangda imung manung khanganba darkar oi. Aigi nung sizarab irei bak cha sing. Man ki bata andav viswas ki maramda khanari. Masi chahi lising kaya liraba wakhaloni. Masi aranba wakhalon oibata natana akibasu pokhali. Matamduda miyoibana achumba masak khangbangamde. Andav viswas ta lublaba miyoishingna karimata khantadana. Achumba khangdana loba warepna achouba khudong tiba thokhali samasa sida masibu singnaba miwe leitaba nate under biswas tagi biswas phawgi khongchat asi laide masigi matangda aiha khara haijage maruf singh asamda hargila kauba uchek ama phangi masina mahousabu luna nana thambada achouba thodang lowi adubu asamgi mapham kharadadi Masi patti haina tazanarami. Mi singna masibu udanabagi damak mahakna makon saba u pauba kakthatli. Akoibagi pibam singdukriba uchek amagi mapamda tauriba thong adubu bioscientist Purnima Devi Barmanna ure. Mahakna aranba wakhalun asi hongduknaba firep laure. Mahakna nupi singda wari sanare. Mahakna makoida scientific oiba miyengda takpire. Tapna tapna. Nupi singna khongjang asida saruk yarakle adudagi achouba ahongba amalakle matam mamada हत्ते खनरंब उचेक्टु हौजिक्टी खुंगंगदा सखंगनबा हौरकले नुपी लिसिंग कयाना हरगिला आर्मी हाइना मिंगथोंदुना उचेक सिबु कन्नबगी खोंजंग चंगसिले मखोइना समाज बुभाप ताहनबगी दमक अहिंग नुंथिल नायदन होनखी लोइनना अपंग थाज अदुबु मरु फंगना मांगनखी मरुफ सिंह अयाकना तोइन हाइजबदुनी सानरीब मीदु माई पाई हौजिक्टी अखोइगी लेबाकता सानब अमदी माई पाकप नहागी मसिंग यांग हेंगलगली हानग चांगदम नरुबदा हौजिक्टी सानबद करियर सेंबा नहागी मसिंग यामले अइना नागालैंड होनरीबा नुंगायरब थौरांग अनिगी मतांगदा तारे अहानबदा नागालैंड बेबी लीग मिंगसिताबदा मयामनदी यामन अपिकप अंगांगिनी हाइन खलमगनी मसी चही मंगादगिना चही तरादगी तरानिथोई फावगी मनुंग लैबा अपिकप अंगांगसिंगी मयामग मानदब लीगनी मसी लमदम असिदा अंगांगसिंगबु फुटबॉल यामन पामनहनब हौखिबनी मसीदा नुपा मचा नुपी मचा सरुक याब याय लीग असी हौजिक चही अहुम मपुंग फारे लोइनना अंगांगसिंग यामन सुपामनै मरुफ सिंह नागालैंड की अतोप थबक अमना नागालैंड वीमेन फुटसाल लीग फुटसाल हैबसी अनौब वाही ओइन थोलमगनी मसीबु इंदोर फुटबॉल हाइनसु कौने मसीदा टीम अमदा सुपनगी सानरोय मंगालै सानफमसु फुटबॉल गे सानफमदगी यामन पी मरमसिना सानरोय सिंगना मखोयगी टेक्निक अमदी है सिंगबदु यामन निंथिन सिजने नागालैंड की वीमेन फुटसाल लीग असी अखोयगी इचानुपी सिंगी हैथोय सिंगथोयबदु उथोकनबा अचौब तंजा अमा पीरी असिगुंब थौंग असिगिदमक नागालैंड की मियोय सिंगबु थागचरी लोइनना मयामसु मसीदगी इथिल लौबीसी मरुफ सिंह हौजिक्टी टेक्नोलॉजी की मतमनी नुमित खुदिंगी अनौब थिजिनब कया पांगथोकली अनौ अनौब एआई इनोवेशन कया थोरकली मसीदा मियाम की क्रिएटिविटी असीबु करमन ngakतुन थमगनी हैबसी हंगबयाब वहंगनी अनौब टेक्नोलॉजी न चाखलकपग लोइनना अइखोइना अइखोइगी हौरकफमबु करमन लोइनदुन चटमिनगनी वहंग सिंह असीगी पाखुम नागालैंड विश्वविद्यालयना पिबिरे चही लिसिंग कया लीरबा नलंदा विश्वविद्यालय असी हौजिक हौजिक अनौब सगलोन अम लौदुना भारत की लाइबक लेपकदौरी चही अनीगी ममांगदा अयाकना नलंदा विश्वविद्यालय की अनौब कम्प्लेक्सपु मियामद सिननबगी कुदोंग चाबदु फंगजखी नलंदा विश्वविद्यालयना अखोइगी शास्त्र नैनबगी अरीब चन्न परिंग अदुबु अमुक नहौनन हिंगत हले शास्त्र था हाइबसी सुपनगी अगी वाखल फोंदोकनबगी मेडियम नते मसी वारी वताय अमदी खन नैनबगी यामन मरिक चुंब परिंग अमनी मसीदा नैनबग लोइनना इसागी वादु मरम चाना हाइबा यामन दरकार ओय लोइनना मसीदा यामन सुहैब ताय मसीदा अतोपगी वाखलबु पुनिंग चंगन ताबा अमदी खंगनब होनबगी थौना सुलैब ताय नलंदा विश्वविद्यालयना मसीबु मखोइगी कन्वोकेशन सेरेमोनी की सरुक अम ओहेनबसिदा अयाक यामन नुंगाय मसीदा सरुक याब लाकलिब महिरोय सिंह असी तंखाय मुक्ति मिरै बाकी महिरोयनी लीरब चन परिंग अमबु हौजिक समननब होनबगी थौरांग असी यामन थागत निंगायनी मसीगिदमक अयाकना विश्वविद्यालय असीबु हन्न हन्न थागचरी लोइनना अतै विश्वविद्यालय सिंहसु असुमन होनबिनब हाइजरी मरुफ सिंह हौरकफम मसक खंगबा नसिगि नहा सिंगिदमक अनौब टेक्नोलॉजी कया पाइखतप होरे दिल्ली द लैबा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमदी डाटा साइंस ता बीटेक प्रोग्राम हौनब थबक पाइखली हाइरिब मतमग चुनरब टेक्नोलॉजी असी भारत की थाइनदगि चनरकपा ज्ञान ग चानन सेमनबगि माइकैदा संगसिननब मरुओइब खोंथांग अमनी मसीदा भारत की ओइब लोन सिंगिदमक अनौब एआई टूल्स अम थौरांग तौबदा मतेंग फंगनी अखोइगी थाइनगी अरीब लाइरिक अमदी पांडुलिपि सिंगबु डिजिटल द ओंथोकतुना चेक्सिन थंबगी खुदोंग चाबसु फंगनी अइना सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीबु असिगुंब थबक थौरम असिगिदमक हन्न हन्न थागतप फोंदोकचरी मरुसिंह नसी भारत की संस्कृति की तोंगान तोंगानबा सरुक कया संसार की मफम कयादा योहनबंगमली आइखोयगी इसई नोमाई असी संसार पुंबगी मियामना सखंगनरी अमदी तमनरी भारत तगी किलोमीटर लिसिंग कया लापन लैबा कैरिबियन समुद्रदा डोमिनिकन रिपब्लिक हाइन कोबा लैबाक अमले मफमदुदा भारत मचा सिंगी मसिंग चौराकना चाममुक ले मसीद नतना भारत की संस्कृति अमदी धर्म की ओइबा चन्ना लोनचतपु चखतनब कन्न होनरी मफमदुदा स्पेनिश लोन गांगब मियोय सिंगना तिम अम सेमी तिम मसीग ममिंग ब्रह्म कमल डोमिनिकाना कौरमी तिम गी मेंबर सिंग पुल्लगा वैदिक साहित्य की मरमदा खन्न नैनरमी मखोइना वैदिक साहित्य की मंत्र की खोंथोक्सु तमलमी मखोइदा मसीगी फॉर्मल ट्रेनिंग फंगदे अदुबु मखोइना ऑडियो रिकॉर्डिंग कया तारगा मसीगी तसेंगब खोंथोक अदु तमलमी ngasidi makhoi mantra kaya yamna phajana thibangamle haiba mantra sing asida purush suktam sri suktam sri rudram durga suktam amadi devi mahatmayam yauri bharat tagi yamna lapna leiba leibak asina aikhoi gi dharma gi oiba chanabi sing asibu tamnana bagi damak yamna thawai yauna honari ba si thagat ningai ni aina brahma kamal dominicana gi member khudimakpu याइफ थौजाल पिजरी भारत की संस्कृति बु संसार पुंबगी मियोय सिंगदा हेन अपांब पोखंदुना मसीगी माइकैदा संसिन नब होन बिरिबा मियोय सिंगबु अइने थागत प फोंगदोकचरी अइगे नुंसिजरब इरेबाक चासिंग मेघालय बु सक्ताकलिबसी मफम दुगी फजरब लैचिन नोंफाइनी मेघालयदा चतलुब मियोय सिंगना मफम सिगी फजरब कया अदुबु मतम सांगन निसिंगदुन लैनी अदुना मेघालय की फजरब कया पुदुना अयाकना ngasi मन की बाता अदोंग लोइनना खन नै नजगे मेघालय की रूट ब्रिज असिदी लंबी की रूट नते मरा की ओइब रूट नि हाइरिब रूट ब्रिज असिगी वारिसी याम ननुगाय हाइरिब ब्रिज असि नमित खरनी चही खरनी द साखिव नते मसि सेमगतनब होनबदा चही चा कया चंखी रबर पांबी की मरा सिंह असि तपना तपना माइकई अमरोमदा संदोखले हाइरिब मरा सिंह असि इसिंगी इचेल वांग मलाना चलहले मतमगी मतुंगिना मरा सिंह असिना अकनब ब्रीज अम ओइखे ब्रीज असिगी तोंगानब मगुंदी मसी अहिंगब ब्रीज अमनी मतम कुइर कुइरगा मसीगी मपांगलसी यामन कल्ले मसिदा मेघालयगी मियोय सिंहना सेंब साब हैबगी कला अदु उब फंगे मसीगी मरमदा चही चा कया लेप्तन होनरकपा अमदी प्रकृतिग सागोनदुन लैबगी ममी ताय ब्रीज असिना मियोयब अमदी प्रकृतिग पुंदुना अंगक पोट कया पुथोकप ngami हैबसि ताई मसी आइखोयगी लैबाकी लमसीगी लेंगद्रब लन्नी हौजिक भारतना मेघालयगी रूट ब्रीज असि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्कता याहुन्नवा हाइजखरे मरुप सिंह क्लाइमेट चेंज नमरम ओइदुना रूट ब्रिज असि अवाब कया मायोक नरी असिगुंब मतम मसिदा मेघालय की मियोय सिंगना प्रकृति की ओइबल लन नसिबु ngak सेनबगी थबक पाइखली असिगुंब ब्रिज सिंग असि कया यामन लई हाइन थिगत प असि अराइब थबकती ओइदे अदुबु लमदुगी मियोय सिंगना मसिंग थिबगी थबक हौखे मसिगी मतुंगदा कांगलुप कया की मियोय सिंगना ब्रिज असि ngak सेननबगी थबक तवे ngasidi मफम सिगी मियोय सिंगना ब्रिज चामग कुनगी मथकता यिंगसिनबगी थबक चथरी तिम खरना चही खुदिंगी ब्रिज असि यिंगसिनबगी थबक तौरी मियोय खर अमना मनाक नकप मफम सि हेन कन्ननबगी दमक पांबी कया थाबगी थबक सु तवे मतवसुमना मखोइबु ngak सेनबगी दमक इकोसिस्टम की थबक थौरम कया थौरांग तौरे अदोम सुखंबीरमगनी मधुदी चही असिदा हेलीवार जीदा पद्मा अवार्ड पीखरे महाकना महाक की पुंसीगी चही यांखई हेन ब्रीज असिगी दमक थबक तौखे महाक की कथोकपगी मौंग असि अखोइ पुंबन तमजनिंगाइनी मरुप सिंह अदोमन करीगुंबा रूट ब्रीज असिद चलुरबदी madugi photo sing adu social media da soidana thagatpiu adongi photo aduna atopa miyoi kayana meghalaya gi angakpa phajaraba langai pukai kayagi maramda khanganna nabgi damak tanja adu phangani aigi nungsi jaraba irei bakcha sing aikhoi pumbana aikhoi gi khungang sahar asi taru tanana thamba haibasi pami adugu aikhoi na lambi da amot akai uba matamda Masi, Makoigi Matoni, Makoina Togadavani, Haina Kali. Adu, Akoigi Maraktasu, Makoina Toktoropa Tabak Kayada, Akoina Tamzaningai Uibakaya Yogdavanate. Aina, Major Pradeski, Rasgar Zilagi, Bararegi, Itzel Singi Maramda, Karang Panjage. Makoigi Manak Nakpa Singda, Chaitokliba, Plastiki Amot Pakaya, Singtuk Nabagi, Wasaki. Makoina Masi, Kanagumba miwishing the singdokani haibagi wakal kankide. Makoi masamakna, sahar sin batungna, plastiki amotpakaya amadi, ahangba bottle sing singdokpagi tabak hauke. Tapna tapna, makoina, pattaba plastic singbu, eco bricks oina, ontoklami. Ngasidi, eco bricks asina, mapam ayamada sinaduna, yamna pazaba ama uire. Rasgarda, haukiba ta karasida, Plastic kezi lising kaya recycle tauduna apaba thabak kaya da sinakre. Haibadi saharda saikhaiduna leiramba plastic kaya adu ngasidi isel sing asigi hona jamana apaba thabak ta sinabangamle. Aina bararagi isi isel pumba amadi thauramasida yauriba pumba thagatpa phongdokchari. Aigi nung sizarava irei bakcha sing. Aingonda miyoi kayana yamna maru oiba hiramsida Wahi kara pongdok naba chithi ibirei. Masi Ganesh usab ka mari leina bani. Ganesh usabti yamna watli adubu miyamna haizabadegi hiram sida wa kara pongdok chage. Ganesh jigi muti sabagi thabak asi yamna watli ngaydegi sabahunai. Muti sabami, muti bu yongadabami punamak hojiktagi thaurang taunare. Maram sina aina adomda haizagadabadi Adom adongi yumda society netraga manak nakpa mapham singda ganapati bappagi muti larpatarabadi aikhoigi deski leibakna saba aikhoigi sapu saba amadi khutsa haiba singna sabadamak sizinasi aduga ganeshki muti saba singdasu aina haijagadabadi makhoina ahanbada leibakki muti damak sabiyu aduga muti leibiriba singnasu muti adu karina sabano amadi Kadai the Sabano Hybadu Yangbiu. Plaster of Peristagi Saba Muti the Singna Leviganu. Maruf Singh Laibaki Mutina Puza Taurabatunda Irai Laina Ising the Tadabayai. Masina Aikoigi Turel Pukri Singh the Polusan Tokande. Aikoigi Tazabasu Mangre Aduga Prakitigi Oiba Amangbo Oidre. Aikoi Aikoigi Iramgi Kutsa Haiba Singhagi Muti Leire. Aikoina Bokel for local gi wasaksu he na chesil hale. Aina thazaba thamli madudi Ganesh usab amadi usab punamakta miyam na gyan tana aigi wafam singa si ning sing bigani amadi laibaki kananabagi damak khongthang kya lo khalakani haiba. Maruf Singh aikhoi gi laibaki khwairigi chauba sakti di aikhoi gi laibaki miyam ni. Laibak sigi tongan tongan ba saruk singda Honariba achau macha kaya sing asidagi aikhoina para kaya tamli hairiba honaba kaya asidagi pukchil singna samaj ka loina na honarabadi aikhoina ngamda balaite samaj da ahongba kaya purukpa ngami adongi manak nakpa miyoi singi hona jaman kaya du aingonde iduna khangan birau maduna leibaki yai phaba oigeni mathang thada amuk hana unarasi ireibak cha singda anu anuwa wakhalon kaya puduna lakchage Madu fauba adomna adongi imung manungbu chekshina senabiu aduga amana adom ising yoksin naba kaubiganu. Nongju thage ising marik marik singadu yoksin biu catch the rain hairiba thaurangasi kaubiganu. Aina maruwaina haizagadabadi nongi ising marik marik singasi aikhoina yoksin si hanna hanna thagachari.
2: Ikai khum nazari ba Bharat ki Pradhan Mantri Shri Narendra Modi na miyam dapi ba pukningi wa Man ki baat Manipuri wahan toki chamaga kuntra manga subatanka daviri. Makhal mathel ki tharum kaya lan tok chari ba FM Sangai channel dagini. 타로마카 차타 자락포 오이나 따비리바 싱기다막다 마타미세이마 쿠돌 담제리 소로카이밤 우모니나 삭바 라탄 쿠마르 로이통밤나 세링바 이셰니

0: रतन कुमार लोयतोंग बंगी मयेकता सुरुखाइबम उमोनी न सकपा मतमिसई ताविरे अदोन थरोम ताविरी वासी मेगाहर्ज चामहुम दसमिक मंगा द संतोक चरीबा आगस्वानी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दगिनी
1: Presenting Mahindra's all-electric SUVs, the BE6, XUV9e and XUV9S, with a real-world range of over 500 kilometers, lifetime battery warranty and ultra-fast charging from 20 to 80% in just 20 minutes. So what are you waiting for? Visit Shiv's Auto Imphal for test drive today and bring home your dream car.
0: Agaswani Imphal, Haujik Numit Yungba Pung Tarani Thoitare, Manipuri Da Pau, Tavirasi.

0: ngua san bi tai be ma yingune koro thak ta thok iba tha jama gi mangal se ningol puk ning khu kre da tai be ma on thok ne su phaja kre dai tai be ma tai be ma a tang lo thing ji lak le khum len tung khul ta lu ra se asan bi
1: नपन्नचागे वातबी पंथाउन थक्के वातबी नुंगाइबन नसर कोई ताईबाई मिराई लगता नथन तताउन लैरेबी निंथम चंग बिला तो न खाब उलेल मरत खांग बलाद की मतौबुं कुयोन मानवाबा निंग सिंग्रब्रा चिंगलौलो सोरा तैरगा नमान मचा तो नत्रबदी नाई तोम तो मचिक लागू तोक्सनी है
0: करी कुंदेन मंगलानो पुंगनु असान भी इताई भी मा असान भी इनुंगा लबरी यंग असान भी नना यंग जरुगे इताई भी मा इताई बेमा ननाय ने येंजबदा इनुमानगदबा वांगलेन खरावात खिनीये नैहा खमलेन दुखुन तान खिसे ताई बेमा करीब ठोकलाका

धन्यवाद सुजाता। नमस्कार श्रोताओं, मैं खुराइजम बेबी रोशनी आप सभी श्रोताओं का गीतमाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप सुन पा रहे हैं 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित FM संगाई चैनल से।

श्रोताओं, आज रविवार है और पहले की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम संगीत धमाका। तो आज कुछ नया करते हैं, कुछ नए अंदाज के साथ। तो सुनते हैं ये पहला एल्बम गीत। आवाज़ दिया है अभिजीत भट्टाचार्य ने और यह रिलीज़ हुई है 2013 में। शब्द रचना नुसरत बद्र के हैं और सुरों से पिरोया है शब्द ऋषि ने। सुनते हैं ये एल्बम गीत।

दूसरा गाना पेश है एल्बम तेरा मेरा दिल से। ये एल्बम रिलीज़ हुई है 2003 में। तो इसको आवाज़ दिया है रूप जौहरी, सलमान खान और कुणाल गांजावाला ने। शब्द रचना समीर के हैं और सुरों से पिरोया है हिमेश रेशमिया ने। तो सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, मैं जो अभी गीत सुनाने वाली हूँ, ये गीत सुनकर मुझे लगता है कि आप सब लोग हंसी वादियों और खुले आसमानों को बेशक महसूस कर पाएंगे। तो पहले सुनते हैं ये गीत और मैं बाद में बताऊंगी गायिका और गायक का नाम।

अभी आपने सुना केएस चित्रा और उस्ताद सुल्तान खान के युगल स्वरों में एक गीत। एल्बम का नाम है पिया बसंती। यह एल्बम रिलीज हुई थी 2000 में और इस गीत को शब्दबद्ध किया है इब्राहिम अक्षक ने और सुरों से पिरोया है संदेश सांदलिया ने। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे मुझे फिर ये नजर, तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे मुझे फिर ये नजर, तन्हा दिल खुशियों से रिश्ता रिश्तों के वास्ते मुझको फिर होगा जोड़ना। दोस्तों ये गीत के अक्षर तो आपने सभी ने सुना होगा, तो सुनते हैं शान की आवाज में एक गीत। एल्बम का नाम है तन्हा दिल और ये एल्बम रिलीज हुई थी 2000 में। शब्दबद्ध किया है शान ने ही और संगीत से सजाया है राम संपत ने।

श्रोताओं, कभी कभार गीतों में दो भिन्न भाषाओं का मिश्रण भी सुनने में और आकर्षक लगता है, लगता है ना? सही कहा ना मैंने? मराठी भाषा का यह गीत सुनते हैं संजू राठौर की आवाज़ में। 2022 में रिलीज हुई यह एल्बम है और ये गीतकार है संजू राठौर और संगीतकार है जी स्पार्क।

श्रोताओं आपको कैसा लगा हमारा आज का यह कार्यक्रम? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। संगीत धमाका का सफर आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाद में 2:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में। मैं आज आप सब लोगों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत प्रस्तुत करूंगी, तो आप अपनी रेडियो सखी खुराइजम बेबी रोशनी का इंतजार कीजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: आया है।
1: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandedh, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
0: हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़कर के रहे।
1: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's creativity in the age of technology and AI. He said Nalanda University has found a solution to this and is now shaping India's destiny in a new avatar.
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: Mr. Modi highlighted other significant efforts are underway to prepare the youth for new technology while keeping them rooted in their heritage. The Central Sanskrit University in Delhi is launching a B.Tech program in artificial intelligence and data science. Prime Minister Modi expressed happiness that Indian culture is reaching various corners of the globe today. He spoke of an initiative in the Dominican Republic, which has an Indian population of around 100.
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: The Prime Minister mentioned Meghalaya's root

0: पंथुंग यौरनी खन्ना सागच्चरुब मंगलान कया कया थाजदब मिकुप्ता किंथारक्तुना काइनबगी थोंजिलदा लेपखिबा पंथुंगी महुत बिदाइना सिंखिबा नुक्सीवारी कयानी
1: खुदोगी अरोइबदा लौखचरीब इशयसी सुरेन अमदी प्रतिमागी अपुनब खोंजेलदा अबुंगवाइने सैरेंगबा राहुल ब्लूना सैरांग इशयनी खुदोल दमजरी मयामपुन्ना तामिनाशी।

0: ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯁꯦꯜꯁꯀꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯃꯦꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞꯀꯤ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯐ 32 ꯃꯦꯠꯁꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे यूपीआई से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ।
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

0: गीत के मरी सुबह खुदोल दा कुमार सानो दे गीत में मु पुनता में नरसे।
1: अरे बुल्ला, मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे
2: जैसे क्या

10:30 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका स्वागत है। प्रोग्राम हर श्रृंगार आपके साथ, मैं विकास, नमस्कार।

अभी बाहर तो पता नहीं कि चांद मुस्कुरा रहा है या नहीं मुस्कुरा रहा, लेकिन स्टूडियो में बैठकर मैं जरूर मुस्कुरा रहा हूँ। और मेरे मुस्कुराने की वजह यह है कि आज हर सिंगार में बात मैं थोड़ी सी पहेली से शुरू करना चाहता हूँ। आज बात करेंगे दो पतंगबाजों की, जिन्होंने न सिर्फ कई पतंग साथ उड़ाई बल्कि हमारा और आपका दिल भी उड़ा लिया। तो अब पहेली क्या है? पहेली ये है कि जहां जहां अभी आप मेरी इस बातचीत को सुन रहे हैं, वहां से बैठे बैठे आपको थोड़ा सा काम करना है। काम ये करना है कि आपको अंदाजा लगाना है कि कौन थे ये दो पतंगबाज और जिन्होंने साथ में मिलकर पतंगे न सिर्फ उड़ाई बल्कि कहते हैं कि एक दूसरे ने अपनी अपनी छतों पर पतंग उड़ाते उड़ाते गाना भी इंजॉय किया, यानी गाते हुए पतंगे उड़ाई। हिंट के तौर पर मैं कह सकता हूं कि दोनों ये जो नाम है हिंदी सिनेमा में मशहूर गायक रहे, काफी सम्मानित और हमारे और आपके दिलों में घर करने वाले।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हुए हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार। जी मैं भूला नहीं हूँ, मुझे वो दो नाम बताने हैं जिनके बारे में मैंने आपसे सवाल पूछा था। आपको पता है कि ये जो दो नाम मैंने पूछे हैं ना आपसे, वो पार्श्व गायन के महारथी माने जाते हैं, यानी ऐसे प्लेबैक सिंगर जिनके नामों के बिना उस दौर के संगीत को अधूरा माना जा सकता है। और देखें तो असल में ये बहुत बड़े पतंगबाज भी थे। अब आप कहेंगे कि नाम तो बता नहीं रहा, तब से गोल गोल बातें बता रहा है, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों ने शायद अंदाजा भी लगा लिया होगा कि ये दो नाम कौन से हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये दो नाम थे रफी साहब और मन्ना दा, यानी मन्ना डे। पार्श्व गायन में फेमस होने के बावजूद पतंगबाजी इन दोनों का प्रिय शगल रहा। जी ये दोनों के दोनों एक तरह से एक दूसरे के पड़ोसी थे और अपनी अपनी छतों पर जब भी इन्हें खाली वक्त मिलता तो पतंगबाजी किया करते। यहाँ तक कि मन्ना डे खुद को प्रोफेशनल पतंगबाज मानते और अपनी छत पर पतंग उड़ाते हुए बेबाक अंदाज में गाया करते। कहते हैं कि मन्ना डे को रफी साहब की पतंग काटने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी।

क्योंकि मन्ना दा की चल रही है, तो एक चीज और भी दिलचस्प है जानना। जी, वो ये कि मन्ना दा अगर स्टूडियो में हमें ना मिलते तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं हमें पहलवानी करते नजर आते। असल में कुछ साल पहले, यानी स्टूडियो में आने से कई साल पहले, मन्ना दा अखाड़े में पहलवानी करते नजर आते थे। मन्ना दा के चाचा प्रसिद्ध गायक केसी डे रहे और उनके दोस्त थे यतेंद्र चरण गुहा, जो पहलवानी जानते थे। एक दिन वे मन्ना दा से टकराए और उन्होंने पूछा, क्या करते हो? मन्ना दा ने कहा कि जी मैं पढ़ता हूं। ये सुनकर यतेंद्र चरण गुहा जी ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन साथ में क्या करते हो? मन्ना डे ने कहा कि जी मैं कबड्डी, गिल्ली डंडा, क्रिकेट वगैरह खेलता हूं। हैरान होकर यतेंद्र जी ने कहा कि व्यायाम नहीं करते? ये सवाल सुनकर मन्ना दा थोड़ा सा रुके और रुक कर बोले, यही तो व्यायाम है, और क्या व्यायाम करूंगा। ठीक है, यतेंद्र चरण गुहा ने थोड़ा सोचा और कहा कि कल से तुम मेरे अखाड़े पर आना और कुश्ती लड़ना। दूसरे दिन से ही जो है मन्ना दा उनके अखाड़े पर जाने लगे और कुश्ती में पारंगत हो गए। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर पहलवान के तौर पर फाइनल तक पहुंचे।

प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार और थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, लेकिन समाचारों के बाद एक बार फिर जुड़िएगा हम ही से यानी FM गोल्ड के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है. भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले. आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी.
2: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles president conferred the prestigious honor on Prime Minister Modi. Prime Minister Modi dedicated the honor to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognizes that our futures are interconnected and interdependent. On the sidelines of the Seychelles visit, Prime Minister Narendra Modi met Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandra Ramgoolam today. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Prime Minister Modi underscored the importance attached by India to the development and progress of Mauritius, noting that the ongoing bilateral projects will contribute to Mauritius' healthcare, connectivity, sustainable development and blue economy. India today categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Ranadhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. He said Pakistan should rid itself of its proclivity to rely on terrorism as an instrument of state policy. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today launched the pilot project of PM Family Care Tracker at Gandhinagar in Gujarat. The integrated digital platform will track the health, nutrition and education of beneficiaries from pregnancy until the age of 18 using a unique ID linked to birth registration number or ABHA ID. The anti-corruption branch, ACB, Delhi, has arrested the then-Director General Health Services, DGHS, Dr. Vatsala Agarwal, and Deputy Controller of Accounts in the Central Procurement Agency, CPA, Neeraj Chopra, in the case related to alleged large-scale irregularities in procurement of medicines, surgical consumables, and medical equipment. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagrish

11:11 हो चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. स्वागत है आप सबका एक बार फिर प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत में. आपके साथ मैं विकास.

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।

जी कुछ रिश्ते होते ही ऐसे हैं जिनसे कई दफा हम चाहते न चाहते हुए भी शिकवा नहीं कर पाते। कुछ रिश्ते बारिश की बाद जो मिट्टी से खुशबू उठती है ना, उसकी तरह होते हैं। नजर नहीं आते मगर पूरी रूह में उतर जाते हैं।

किसी से शिकायत रहना या किसी से शिकायत करना भी दिलचस्प होता है। शिकायतें भी कह सकते हैं कि अजीब होती हैं, जिससे होती हैं उसी के लौट आने की उम्मीद भी साथ लाती है। और शायद तभी किसी ने कहा कि गिला भी तुझसे बहुत है मगर मोहब्बत भी, गिला भी तुझसे बहुत है मगर मोहब्बत भी। वो बात अपनी जगह है और ये बात अपनी जगह।

11:30 मिनट हो चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हुए हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है गीत मेरे मन मीत। आपके साथ मैं विकास। रफी साहब की ये प्यारी सी मखमली सी आवाज और इस आवाज को भुला पाना शायद इस जन्म में हम में से बहुत से लोगों के लिए मुमकिन ना हो, क्योंकि ये आवाज रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, हमारे दिल को हल्की हल्की थपकी सी होती है ना, जिससे हमें उस खामोशी के पल में भी सुकून मिलता है, कुछ ऐसा ही एहसास करा जाती है। और यकीन मानिए किसी को भूलना इतना आसान भी नहीं होता। कुछ कुछ इसे ऐसा कह सकते हैं कि किसी किताब से एक पन्ना फाड़ देने जैसा भी नहीं होता। ये तो पूरी किताब पढ़कर भी उसे एक सफ़े पर बार बार लौट जाने जैसा लगता है।

फिल्म का नाम रहा अनुभव। 1972 की ये फिल्म थी और अगर आप में से कुछ लोगों ने इस फिल्म को देखा हो तो आपको याद होगा कि ये फिल्म कितने सारे जज्बात लिए हुए थी। एक एक परत दर परत जैसे रिश्ते हमारी आंखों के आगे खुलते रहते हैं। फिल्म का संगीत इस कहानी को आगे बढ़ाता है। संगीत की बात करूं तो इस फिल्म में संगीत रहा कानू रॉय का, और जिन लोगों ने इस फिल्म को ना देखा हो तो जरूर इस फिल्म का नाम कहीं पर नोट कर लीजिए और यकीन मानिए आपको शायद दिल को छूने वाली ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। फिल्म का नाम है अनुभव। ग्यारह बजकर 40 मिनट होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हुए हैं आप। आपके साथ मैं विकास और प्रोग्राम चल रहा है गीत मेरे मनमीत।

कुछ फिल्में होती हैं ना जो अपने संगीत के साथ हमें बांध लेती हैं, और उनमें से एक फिल्म ये कही जा सकती है जिसका नाम बहू बेगम है। इसमें बहुत से ऐसे गीत हैं जो अगर आप गुनगुनाने लगते हैं तो एक अलग सी आप में एहसास जो है वो तारी होने लग जाता है। 11:50 होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz के साथ आप जुड़े हुए हैं, और कोशिश कर रहा हूँ मैं आप तक उन प्यारे प्यारे नगमों को पहुँचाने की जो हमारे दिल के और आपके बहुत करीब हैं।

दुलारी फिल्म का ये गीत है. दुलारी आई थी 1949 में और देखिए वक्त 2026 का है लेकिन संगीत कभी नहीं मरता. पुराने गीत अपनी खूबसूरती के चलते हमारे जहन में यूं ही बसे रहेंगे. इस वादे के साथ कि विकास आपसे फिर दोबारा कभी ना कभी जरूर मिलेगा. रखिएगा आप अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल. नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग ले रहे हैं। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दवाओं, शल्य चिकित्सा के सामान और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताओं के मामले में 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक डॉ वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उप नियंत्रक लेखा नीरज चोपड़ा शामिल हैं। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। बेलफास्ट में आयरलैंड ने भारत को दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में बड़ा उलटफेर करते हुए 1 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of two Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, Mr. Modi addressed a joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: मेरी सेशेल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है. भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले. आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी.
2: The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space, and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. On the sidelines of the Seychelles visit, Prime Minister Narendra Modi met with Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandra Ramagulam. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They also reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Both leaders reaffirmed the significance of the India-Mauritius Enhanced Strategic Partnership under India's vision Mahasagar and Neighbourhood First Policy and their shared commitment to the Global South. India categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against terror infrastructure on its territory. He said Pakistan should rid itself of its proclivity to rely on terrorism as an instrument of state policy. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launched the pilot project of PM Family Care Tracker at Gandhinagar in Gujarat yesterday. The integrated digital platform will track the health, nutrition and education of beneficiaries from pregnancy until the age of 18 using a unique ID linked to birth registration number or Aadhaar ID. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis said the 1400-kilometre Delhi-Mumbai expressway being built at an estimated cost of 1 lakh crore rupees will significantly improve connectivity between northern and western India and emerge as a major catalyst for the country's economic growth. After reviewing the progress of the Vadodara-Mumbai section of the expressway, Fadnavis said the 157-kilometre Maharashtra stretch is nearing completion. He said out of the 7 construction packages, 5 have already been completed, while the remaining 2 are expected to be finished by August this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation. The Commerce and Industry Minister said that during the visit to Greece, the delegation will participate in presentations and startup pitches at the Athens Startup Business Incubator, THEIA. In men's cricket, Ireland defeated India by 1 run in the second and final T20 International in Belfast to clinch the 2-match series 2-0. Batting first, Ireland posted 154 for 8 in their stipulated 20 overs. In reply, India fell short of the largest... India fell short of the target, finishing at 153 for 9 in 20 overs. Ireland had...

ये जानना कि तुम जानते हो कि जानना क्या होता है, ये जानना कि तुम जानते हो कि जानना क्या होता है, धीरे धीरे ये समझना है कि तुम्हारी उंगलियों के बीच जो खाली जगह है वो हाथ थामने के लिए है। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 12 सेकंड, शुरू हो चुका है प्रोग्राम निशिगंधा। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज के साथ।

वैसे आज खिड़की के बाहर मौसम कुछ ऐसा ही है, यकीन ना हो तो झांक कर देख लीजिए। अगर आप मुझे किसी खास शख्स के साथ सुन रहे हैं तो उनका हाथ थाम लीजिए, और अगर वो आपसे दूर हैं तो महसूस कीजिए उनकी मौजूदगी को, क्योंकि सफ़र वही जो साथ में तय किया जाए और मंजिल वही जो दिल तक पहुंचे। अगला गीत आप ही के लिए, लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ में।

0: फरमाना।
1: जब तैयारियां इतनी जोरों शुरू से है तो आना तो पड़ेगा ही। मैं तो आ गई हूँ और आप भी जल्दी से जुड़िए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, क्योंकि हाँ हम जुड़ते हैं दिल से दिल तक। वैसे ही आंखों आंखों वाली बातचीत भी कमाल की होती है ना। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा चेहरा है जिसकी पलकों के उठने और गिरने से आपकी सुबह और शाम होती है, तो ये अगला गीत उसी के लिए, अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में आप ही के लिए।

जैसे इश्क में ऐसा ही होता है, जब मोहब्बत मुकम्मल होती है तो फिर उस इंसान के सामने सारी कायनात फीकी लगने लगती है। कहते हैं कि चांद में भी दाग होता है, लेकिन जब हमें किसी से बेइंतहा मोहब्बत होती है तो वही इंसान सबसे हसीन, सबसे मुकम्मल लगता है। अगर आप भी किसी की यादों से घिर आए हैं जिसके सामने चांद की रोशनी भी फीकी लगती है, तो ये अगला गीत उसी के नाम, अगला गीत रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में।

हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। किसी की तरबियत का है करिश्मा, ये आंसू मुस्कुराने लग गए हैं। कहानी रुख बदलना चाहती है, कहानी रुख बदलना चाहती है, नए किरदार आने लग गए हैं। हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:40 और 18 सेकेंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा सुन रहे हैं आप। और अगला गीत लता जी की आवाज में।

0: आप जानते हैं मोहब्बत की आखिरी हद क्या होती है? मुझे लगता है कि आखिरी हद वो है जहां आप अपनी वजूद से ज्यादा सामने वाले की जिंदगी की दुआ करने लगते हैं। कहते हैं जब हम किसी से ऐसी शिद्दत वाली मोहब्बत करते हैं ना, तो अपनी सांसें भी उनकी अमानत बन जाती है।
1: मुकेश जी का नाम आते ही बहुत सी यादें भराती हैं। मुकेश जी के साथ मेरे बहुत प्रोफेशनल रिलेशंस बहुत देर से नहीं थे, लेकिन इमोशनल रिलेशंस बहुत ज्यादा थे। मुझे सिर्फ एक दुख है कि मैं उनको बहुत देर से मिला। इतने बड़े सिंगर, इतने महान कलाकार।

हम सभी अपनी जिंदगी में ना जाने कितने ख्याल देखते हैं, सोचते हैं, उनमें से कुछ ख्याल पूरे होते हैं और कुछ अधूरे ही छूट जाते हैं, है ना। ख्याल एक ऐसा परिंदा होता है जो वक्त और फासलों की बंदिशों को नहीं मानता। हम सभी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी ऐसे शख्स का इंतजार जरूर करते हैं जिसे मिलने के बाद लगता है कि सफर अब मुकम्मल हो गया। कोई ना कोई एक चेहरा ऐसा जरूर नजर आता है या लगता है कि हाँ, ये वही चेहरा है जो मेरी अधूरी नज्म के लिए मुकम्मल है।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही. अब से थोड़ी देर में यानी 1 बजे सुनेंगे आप समाचार. अब से फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में. आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज में अमेरिका के कैलिफोर्निया में राउंड ऑफ 32 के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबला जारी है। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of two Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, Mr. Modi addressed a joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. Mr. Modi said, India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size, but on mutual respect and trust. He said, India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai, jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास-पास नहीं साथ-साथ चलें.
2: The two countries also exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space, and health. On the occasion, PM Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, PM Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Mr. Modi reached Victoria on Saturday on a three-day visit to the East African island nation. On the sidelines of the Seychelles visit, PM Modi met with Mauritius PM Dr. Naveen Chandra Ramgoolam. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They also reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Both leaders reaffirmed the significance of the India-Mauritius enhanced strategic partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. India categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swastha Karyakram during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi today. The Ministry of Health and Family Welfare said that it will carry forward the vision of Pehle Teen Saal Sampurna Dekhbhal, recognizing the critical importance of the first 3 years of life for child survival, growth, nutrition and early brain development. A sessions court in Maharashtra's Bhiwandi remanded the three accused arrested in the Maharashtra teacher eligibility test paper leak case to police custody till July 6. Investigators suspect the involvement of an interstate examination racket. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom, with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation. The Commerce and Industry Minister said that during the visit to Greece, the delegation will participate in presentations and startup pitches at the Athens Startup Business Incubator. In Assam, the flood situation in Dhemaji has worsened following days of heavy rainfall in the district and neighbouring Arunachal Pradesh. The raging flood waters of the Seman River have washed away a portion of a crucial railway bridge, entirely cutting off rail connectivity in the area and bringing train services to a complete standstill. State Disaster Response Force is carrying out rescue operations in Ujjalpur village under the Dimao Panchayat, where the 60 stranded families are being evacuated. Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma stated that the situation is being closely monitored. The India Meteorological Department has issued a red alert for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for today. The Met Department also predicted heatwave conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh and Uttar Pradesh for today. And that is the end of this news bulletin.

जहां इतिहास और इतिहास और स्मृतियों से संगीत हमें आवाज देता है। तो चलिए फिर इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं 1950 की कालजयी फिल्म के गीत से, जिसे आवाज दी है तलत महमूद और शमशाद बेगम ने।

पहली नजर में मोहब्बत को अगर बयां करना हो तो शायद गाना यही होगा। अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाज में 1950 की कालजई फिल्म बाबुल से ये गीत आपने सुना। संगीत था नौशाद साहब का और गीतकार थे शकील बदायूनी। और अब अगला गीत रफी साहब और लता जी की आवाज में।

हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार और रोमांटिक फिल्मों में से एक। संगम से सुन रहे थे आप ये गीत रफी साहब और लता जी की आवाज में। संगीत शंकर जयकिशन साहब का और गीतकार थे हसरत जयपुरी। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था राज कपूर साहब ने और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1964 में। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर, वैजयंती माला और राजेंद्र कुमार ने। फिल्म संगम की कहानी तीन दोस्तों के, यानी कि राज कपूर, वैजयंती माला और राजेंद्र कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। ये फिल्म दोस्ती, प्रेम और त्याग को बहुत ही भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत करती है। और अब अगला गीत आप तक पहुंच रहा है लता जी और मुकेश की आवाज़ में।

0: अभी आपने सुना फिल्म आज का पंछी से ये सदाबहार गीत मुकेश और लता के आवाज में। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1961 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था मोहन कुमार ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला ने। ये फिल्म जो है वो युवा के सपनों को लेकर, उसकी जिम्मेदारियों को लेकर, उसके संघर्ष को लेकर बनाई गई थी और इस फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और बोल लिखे थे यानी कि गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। और अगर हम हसरत जयपुरी साहब की बात करें तो वो हिंदी सिनेमा के उन गीतकारों में से एक रहे जिन्होंने अपनी सरल और सहज भाषा से हिंदी गीतों को लोकप्रियता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अब अगला गीत लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज में फिल्म ब्लैक कैट से। संगीत है एन दत्ता का और गीतकार हैं जानिसार अख्तर साहब।
1: या

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू. वक्त हुआ है 1:38 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने. गीत सुहाने एक ऐसा प्रोग्राम जहां हमें संगीत इतिहास और स्मृतियों से आवाज देता है. गीत अब तक पहुंच रहा है अगला फिल्म मधुमती से लता मंगेशकर की आवाज़ में.

1958 में आई फिल्म मधुमती से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत था सलील चौधरी का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था बिमल रॉय ने और कहानी लिखी थी ऋत्विक घटक ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी वैजयंती माला और दिलीप कुमार ने। सहायक भूमिका में नजर आए थे प्राण और जॉनी वॉकर। इस फिल्म की कहानी आनंद यानी कि दिलीप साहब के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे मधुमती यानी कि वैजयंती माला से प्यार हो जाता है और उनके संघर्ष को और चुनौती को इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से और एक नए अंदाज में पेश किया गया है। और अब आप तक पहुंच रहा है अगला गीत आशा जी और मुकेश की आवाज में।

फिल्म का नाम मोहब्बत इसको कहते हैं, और आवाज थी आशा जी और मुकेश की, संगीत खयाम का, और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। ये फिल्म 1965 में आई थी, और अभी जो गीत आपको हमने सुनवाया वो गीत पिक्चराइज किया गया था शशि कपूर और नंदा पर। और अब अगला गीत गीता दत्त की आवाज़ में, फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से।

मुड़ मुड़ के देखना है और फिर से जुड़ना है 2:10 पर मेरे साथ. अभी वक्त है समाचारों का. आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में. आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ग्रीस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल कई स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने कैलिफोर्निया में सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकीमोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज में अमेरिका के कैलिफोर्निया में राउंड ऑफ 32 के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। हाफ टाइम के बाद भी दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of two Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity, and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke sath aarthik samruddhi bhi badhe, jahan hamari saajhedari aakar nahi aapasi samman और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर. मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू. वक्त हुआ है 2:12:31. रात सुरमई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. रात सुरमई यानी रात के सुरों पर बात, रात के दर्द पर बात, रात की पीड़ा पर बात, रात के जज्बात को, रात के एहसास को कुछ गीतों और बातों से समझने की कोशिश. तो चलिए फिर इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की बहुत ही खूबसूरत और सदाबहार गीत के साथ. कार्यक्रम की शुरुआत लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ.

कुछ गाने सुनकर ऐसा लगता है ना कि इश्क की जुबान या फिर मोहब्बत की जुबान कभी पुरानी नहीं होती. चेहरे बदल जाते हैं पर एहसास वही रहता है. अगला गीत रफी साहब और आशा जी की आवाज में.

जब रफी साहब और आशा जी की आवाज एक साथ मिलती है तो मौसम और भमरे गुनगुना ही उठते हैं, और मुझे यकीन है कि इस गाने को सुनकर आपके चेहरे पर भी एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ ही गई होगी। बाहर मौसम चाहे जैसा हो, पर एफएम गोल्ड का मौसम मस्ताना तो है। अगला गीत अभी के लिए

इस गाने को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे काम छोड़कर मौसम को गले लगा लिया जाए, स्टूडियो से बाहर निकलकर मौसम के साथ एंजॉय किया जाए। लेकिन फिर याद आया कि अगर मैं चली गई तो इस मौसम में आपका साथ कौन निभाएगा। तो चलिए फिर आपके दिल का, आपके जज्बात का एहसास समझते हुए अगला गीत अभी के लिए।

वो रुला के हंस ना पाया देर तक, वो रुला के हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक। भूलना चाहा कभी उसको अगर, और भी वो याद आया देर तक। खुद ब खुद बेसाख्ता मैं हंस पड़ा, उसने इस दर्जा रुलाया देर तक। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है ना साया देर तक। कल अंधेरी रात में मेरी तरह एक जुगनू जगमगाया देर तक, वो रुला के हंस न पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

और मैं हूँ आपके साथ, आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:42:10। रात सुरमई महफिल का हसीन और यादगार सफर आप तय कर रहे हैं मेरे साथ। रात सुरमई, जहां हम रात के जज्बात को, रात के एहसास को, रात के दर्द को अपनी बातों से और गीतों से समझने की कोशिश करते हैं, बयां करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर अगला गीत सुना जाए। अगला गीत है शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में।

प्यार का इजहार अगर मुस्कुराते हुए किया जाए तो शायद उसकी जबान वही होगी जो इस गीत में थी. और अब सुनते हैं हम अगला गीत.

वैसे दुनिया छोड़ने की बात गानों में ही अच्छी लगती है और गानों में ही अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि असल जिंदगी में तो अपनों के साथ छोटी छोटी खुशियों में उनके साथ रहना ही असल जिंदगी की दौलत होती है. अपनों के साथ रहना, अपने जो अपने करीबी हैं उनके साथ रहना ही असली दौलत होती है. तो जिंदगी का साथ ऐसे ही निभाते रहना ही असली जिंदगी है. अगला गीत

हम सभी की जिंदगी में बहुत सी तमन्ना होती है, बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं, पर हर तमन्ना पूरी हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता। रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी अर्चना सचदेवा। मुझे यानी अपनी रात की हमसफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी शामिल हुए। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ग्रीस यात्रा के दौरान ये प्रतिनिधिमंडल कई स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के उच्चतम रिकॉर्ड दर्ज किए। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज के शुरुआती मैच में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। मुकाबले में हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो गया। ग्रुप चरण के मुकाबले खत्म होने के बाद 32 टीमें नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इस चरण में 16 मैच खेले जाने हैं। भारत के स्टार शटलर किताम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकीमोतो को हराया। 33 वर्षीय श्रीकांत का सामना फाइनल में चीनी ताइपे के 8वीं वरीयता प्राप्त सू लिंग यांग से होगा। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of two Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said, India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said, India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है. भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले.
2: The two countries also exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space, and health. On the occasion, PM Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, PM Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Mr. Modi reached Victoria on Saturday on a three-day visit to the East African island nation. On the sidelines of the Seychelles visit, PM Modi met with Mauritius Prime Minister Dr. Naveen Chandra Ramgoolam. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They also reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Both leaders reaffirmed the significance of the India-Mauritius enhanced strategic partnership under India's vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. India categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Ranadhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi today. The Ministry of Health and Family Welfare said that it will carry forward the vision of Pehle Teen Saal Sampoorna Dekhbhal, recognizing the critical importance of the first 3 years of life for child survival, growth, nutrition and early brain development. Four traditional agricultural products from Madhya Pradesh have been granted the geographical identification, granted the geographical indication or GI tag. They are Sitahi Kutki, Nagadaman Kutki, Bengani Arhar and Chhatriya Dhan. The State Agriculture Department described the recognition as a major achievement for farmers. A sessions court in Maharashtra's Bhiwandi remanded the three accused arrested in the Maharashtra teacher eligibility test paper leak case to police custody till July 6th. Investigators suspect the involvement of an interstate examination racket. In Assam, the flood situation in Dhemaji has worsened following days of heavy rainfall in the district and neighbouring Arunachal Pradesh. The raging flood waters of the Simon River have washed away a portion of a crucial railway bridge, entirely cutting off rail connectivity in the area and bringing train services to a complete standstill. State Disaster Response Force is carrying out rescue operations in Ujjalpur village under the Dhemau Panchayat, where the 60 stranded families are being evacuated. Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma stated that the situation is being closely monitored. India's Kidambi Srikanth advanced to the men's singles final of the US Open Badminton Championships at the Titan Gym in California. Srikanth defeated Japan's Yudai Okimoto in a hard-fought semifinal yesterday. He will face Su Li Yang of Chinese Taipei in the final this morning. In the FIH Hockey Pro League, Indian men's team defeated England 3-2 in the penalty shootout after a hard-fought 0-0 draw in the reverse fixture at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London. And that is the end of this news bulletin.
3: 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही।

3:11 और 16 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद और इंतजार में बहुत गहरा रिश्ता है। हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें एक उम्मीद होती है कि इसका परिणाम कैसा होगा, और परिणाम अच्छा होगा या बुरा इसका इंतजार भी होता है। इंतजार का अपना एक अलग नशा है जिसमें शिकवा भी है और एक अजीब सा सुकून भी। कुछ ऐसी ही बेचैनी, कुछ ऐसी ही दीवानगी लेकर जब कोई किसी के इंतजार में

कुमार सानू साधना सरगम की आवाज में फिल्म दीवाना से अभी आपने ये गीत सुना। सुना है वादे अक्सर टूट जाया करते हैं, सुना है वादे अक्सर टूट जाया करते हैं और निभाने वाले अक्सर रूठ जाया करते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने वादा किया हो और वो टूट गया हो?

कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज में फिल्म दिल का क्या कसूर से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, कुछ नजरें ऐसी होती हैं जो बिना कोई लफ्ज कहे सीधे रूह में उतर जाती हैं, और तब जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि कहीं इस सादगी पर हम अपना दिल ना हार बैठें।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म चमत्कार से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म हीरो से अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में।

हंसते हुए दिल को पल में रुला देती है, हंसते हुए दिल को पल में रुला देती है, सोई हुई तकदीर को पल में जगा देती है। मत पूछो कि ये मोहब्बत क्या चीज है यार, अच्छे अच्छों को ये सीधे रास्ते से भटका देती है। आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में फिल्म सनम से ये गीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म साजन से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों कहते हैं कि प्यार में थोड़ा सा इंतजार उस प्यार की मिठास को और बढ़ा देता है। जब एक हमसफर दूसरे से कहता है कि एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की, तो वो लम्हा इतिहास बन जाता है।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म कयामत से कयामत तक अभी आपने ये गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से, कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों, हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक, और कुछ ही पलों में सुनिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी शामिल हुए। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 1,00,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बन रहा 1,400 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उत्तरी और पश्चिमी भारत के बीच संपर्क को काफी आसान बनाएगा और देश की आर्थिक प्रगति में सहायक होगा। एक्सप्रेसवे बड़ोदरा मुंबई खंड की प्रगति की समीक्षा के बाद श्री फडणवीस ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे बड़ोदरा मुंबई यात्रा के समय को 8 घंटे से घटाकर लगभग 4 घंटे कर देगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज के शुरुआती मैच में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। मुकाबले में हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो गया। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish B. Abraham. Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of two Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles' President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity, and where partnership is based not on size, but on mutual respect and trust. He said, India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है. भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है, जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास-पास नहीं, साथ-साथ चलें.
2: The two countries also exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, PM Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, PM Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Mr. Modi reached Victoria on Saturday on a three-day visit to the East African island nation. On the sidelines of the Seychelles visit, PM Modi met with Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandra Ramgoolam. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They also reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Both leaders reaffirmed the significance of the India-Mauritius Enhanced Strategic Partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First Policy and their shared commitment to the Global South. India categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Ranadhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swastha Karyakram during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi today. The minister also released the operational guidelines for the Anemia Mukt Bharat Abhiyan at the same conference. The launch will mark a significant milestone in India's fight against anemia as the program transitions from Anemia Mukt Bharat to Anemia Mukt Bharat Abhiyan. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation. The Commerce and Industry Ministry said that during the visit to Greece, the delegation will participate in presentations and startup pitches at the Athens Startup Business Incubator. In Assam, the flood situation in Dhemaji has worsened following days of heavy rainfall in the district and neighbouring Arunachal Pradesh. The raging flood waters of the Simen River have washed away a portion of a crucial railway bridge, entirely cutting off rail connectivity in the area and bringing train services to a complete standstill. State Disaster Response Force is carrying out rescue operations in Ujjalpur village under the Dimau Panchayat, where the 60 stranded families are being evacuated. CM Dr. Hemanta Biswa Sarma stated that the situation is being closely monitored. The India Meteorological Department has issued a red alert for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for today. The Met Department also predicted high heat wave conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh and Uttar Pradesh for today. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. In badminton, star Indian shuttler Kidambi Srikanth advanced to the men's singles final of US Open 2026, beating Yudai Okimoto of Japan in the semi-final in California. The former world number one will face Chinese Taipei's 8 seed Su Li Yang in the final today. And that is the end of this news bulletin.

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

सुबह के 4:11 और 10 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम के साथ आज मैं हाजिर हूं आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। रात का अंधेरा थमा तो एक नई किरण मुस्कुराई है। रात का अंधेरा थमा तो एक नई किरण मुस्कुराई है। देखो धीरे धीरे ही सही पर एक खूबसूरत सुबह आई है। मिट गए सब शिकवे गिले, सब धुंध छंट गई। जिंदगी फिर से नए हौसलों के साथ मुस्कुराई है।

येसुदास की आवाज में फिल्म हैसियत से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी पल पल पर हमारा इम्तिहान लेती है, कभी किसी मोड़ पर तो कभी किसी मोड़ पर। उसी में से हमने ये देखना होता है कि किस तरह हर एक परीक्षा में हमें सफल होना है।

कमलेश अवस्थी अनवर और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म नसीब से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों एक चुप सो सुख, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी और ये सही भी है, क्योंकि हर बात का जवाब देने से अच्छा है कि चुप रहा जाए। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सौतन की बेटी से ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना. आइए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म मन से, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में.

दोस्तों आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा कि किसी खुश मिजाज व्यक्ति को कभी आप देखो तो आपके चेहरे पर भी अपने आप ही खुशी आ जाती होगी। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में वक्त फिल्म से ये गीत।

सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म प्रेम रोग से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी में अलर्ट रहना भी बहुत जरूरी है, इसलिए आगे पीछे दाएं बाएं अच्छे से देख कर चलें। आइए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में फिल्म जोकर से ये गीत।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है घोड़ा जो पैसा है घोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: अगर है खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
0: माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

केजे येसुदास की आवाज में फिल्म चितचोर से आप ये गीत सुन रहे हैं। इसी के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्ध पोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए गए आरोपों को स्पष्ट

सुबह की 5:11:10 हुए हैं। सुबह की इस प्यारी बेला में भोर सुहानी कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है। दोस्तों, आपके सब काम पूर्ण हो जाते हैं अगर उस प्रभु पर विश्वास हो। तो आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है विक्रांत माथुर ने।

दोस्तों, ये छोटी सी दुनिया है और हम कई रास्तों पर चलते हैं जहां हमें कई तरह के लोग मिलते हैं, कुछ जाने से और कुछ अनजाने से।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म रंगोली से ये गीत आपने सुना। दोस्तों, हम हर चीज को बांट कर खाते हैं और शेयर करना एक अच्छी आदत भी है। इसी तरह अगर हम अपनी खुशी भी दूसरों में बांट देंगे तो देखिएगा, आप पहले से ज्यादा खुशहाल होंगे।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में फिल्म तकदीर से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ